0: बावलट्ठा।
1: कौन?
0: पता नहीं, दारू पी के गाड़ी चला रहा था। बंटी बंटी बच्ची हूँ मैं।
1: फालतू साला मुफ्त में सुन रहा है, मत देख उसको।

0: क्लासिक टेकको वाइफाई 6 राउटर नाम एक घर में शक्तिशाली 4 एंटीना में वाइड कवरेज 5G स्ट्रेंथ लो लेटेंसी र फास्ट स्पीड सबै अस्त्र को शक्ति बोकेको 200 Mbps को इंटरनेट अब 3 महीना का लागि मात्र 3300 रुपया में साथ में IPTV मात्र 250 प्रति महीना बुकिंग को लागि 9801004477 शर्तहरु लागू हुनेछन् क्लासिक टेक छोयो कि चल्यो
1: छोटा छोटा मिलेर बन्छ यो दिन सधैँ